अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे।

ठाउ नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखू सूहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखू सूहे वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसम।

पहरावे भी वक्त है, देश भी वक्त है, और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आ।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

उपदेश भी यही हो रहे है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो। ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने उन्हां दे राह छड़ दियो। भाई साहब जी बयान करते हैं मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकता है? कदी नहीं लग सकता। इत्थे एक गल याद रखनी, हर कौम दे विच भैड़े बंदे हुंदे हन, पर सारियां कौमां नूं माड़े कह देना ये ठीक नहीं। हर कौम विच कोई ना कोई भैड़ा बंदा जरूर हुंदा है, पर सारी कौम नूं माड़ा कहना ये इंसाफ नहीं। भाई गुरदास जी बयान करते ने वो गल्लां जिहड़ियां इतिहास है और जो सच्चाई

वेद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं।

इन्हां ने अपना की काम बना लिया, राज भाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देण। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा देना इक औरत वास्ते, पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इन राजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया,

मोम वर्गा होना चाहिए। जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पासे ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं,

गुरु साहबा ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्होंने हिंदू और मुसलमान

बादशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छिलो मार्ग गोविंद एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकदा ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पीवो ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बारक साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई हजूर बख्शिश कर रहे हन के नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदता हन संगता हन ओ आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी आओ सारे प्यार दे नाल जपी

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग कर।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषा ने गुरु महाराज ने भी धरती नू माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

अम्बरीक को दियो अभय पद, भगत अम्बरीक नो अभय पद की प्राप्ति हुई। जन्म मरण के चक्कर तू औरत हो गए, राज पवीखन अधिक करो। जिस तरह पवीखन नो श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उनु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अम्बरीक भगत है इनु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अम्बरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जी

सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ अस उपारना, ओ उठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बच ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिए तो वह श्राप देन वास्ते तैयार हो गया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनु भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नूं, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है इन्ने मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्ने वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

दुर्वासा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नूं मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्वासा ऋषि एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करदे ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारियां तों पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड्डी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड्डी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड्ड के उस दा अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के द्वाले हो गया। ते दुर्वासा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, रखिया ना हंगण देव सबाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्नू भगवान मारे उहनू फिर कौन बचावे। ए दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भज्या, इंद्र लोक चला गया। कहण लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहण लगा, ए मेरे वस दी गल नहीं। ता दुर्वासा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहण लगे, हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया। ता ब्रह्मा जी कहण लगे, तेनू बचाणा हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्वासा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहण लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इस नूं आसरा जदों ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि कि सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया, देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने, सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्वासा तू भगत नूं बुरा किया, तू भगत नूं दुख देना चाहिया, इस करके अगर भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना बड़ा औखा है।

मन विच खुश है मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इन्हें एदे हाथ विच एक छोटी जी गेंद दे दित्ती। बच्चा इस गेंद नाल खेडदा पिया है। मां इस दे हत्थों गेंद लेंदी है, दूर वगा के मारदी है। बच्चा भज के जांदा है, गेंद चुक के लियांदा, फिर मां नूं आके परेशान करदा है। मां फिर उस गेंद नूं लेके दूर वगांदी है। बच्चा फिर भज के जांदा है। इस प्रकार नाले ए मां अपना कम पई करदी है, नाले अपने बच्चे नूं खेडदा वेख के बड़ी खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। मन विच उमंग है, मन विच खुशी है, मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इसे प्रकार कुछ समा बीतिया। इस वारी बच्चे ने गेंद लिया के फिर मां नूं दित्ती। मां ने बेध्याने होके उसे तरह फिर गेंद वगा के मारी, दूर सुट्टी। इस वारी ए गेंद जेड़ी सी बनेरी नाल टकरा के थल्ले जा पई। मां अपने कम विच मशगूल है। इधर ए बच्चा पहले वांग ही भज्जा उस गेंद दे पिछे। हुण बच्चे नूं की पता है कि ए बनेरी तो अगे कोठा खत्म है। छोटा जा बालक, मासूम बच्चा गेंद दे पिछे भज्जिया, गेंद ते टकरा के बनेरी नाल ओ थले डिग पई। ते बच्चे ने जो ही गेंद दे पिछे भजना शुरू कीता, ओदा भी ध्यान चुक गया ते बनेरी

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, छपे छंद तप प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जय, कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गणि जय। त्रिपौन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत। सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्ते।

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तुरे, बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, ओनू असीं मित्र समझने। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी